0: Richard.
1: Rangin tatasa da forte kabilamina sa niskanin, printing to subida po ni Rayako sa.
0: HCL FTC disob, karikat ka kasasati HCL domestico chip card ko stok bikreta.
1: Mobile ka charger, headphone, earphone, data cable, memory, pen drive, card letter, subod mulle ma plus the grind sa.
0: Harik kisip ka mobile, torch light, khani, tata electronic sabagri pa ni pai chet.
2: Surti sevan garne mitra haru ka laki. Aba vikalpa kuru ma ayako sa vikalpa surti. Patanjali dwara utpadit anya samagri pa ni. यानबी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एंड कम्युनिकेशन मा उपलब्ध कराइन्छ।
0: एबी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एंड कम्युनिकेशन बेलदारी बजार कचितपुर।
1: मैनेजिंग डायरेक्टर जगदीश चंद्र बाग एवं एनबी परिवार।
0: कांटेक्ट 9848820778 9809467570।

0: यो हो एनबी रेडियो नेटवर्क www.nepalbodh.com।
1: ओहो साली पो रहेछन्। ओ सालीज्यू देउडे खेल्नु नआयो? आहा मौकाले भेट भयो आज। लौ समय आया बेला खेल्नु गए हल्ला।

0: विक्रेता।
1: मोबाइल का चार्जर, हेडफोन, ईयरफोन, डाटा केबल, मेमोरी, पेन ड्राइव, कार्डिलेटर सब मूल्य में उपलब्ध कराइन।
0: हर एक किसी का मोबाइल, टॉर्च लाइट, खड़ी तथा इलेक्ट्रोनिक सामग्री पाई।
2: सुर्ती सेवन करने मित्र अब विकल्प के रूप में आयो विकल्प सुर्ती पतंजलि द्वारा उत्पादित अन्य सामग्री यानी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एंड कम्युनिकेशन में उपलब्ध कराइन।
0: एबी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एंड कम्युनिकेशन, बेलदारी बाजार, कच्चीपुर।
1: मैनेजिंग डायरेक्टर जगदीश चंद्र बाग एवं एनबी परिवार।
0: कॉन्टैक्ट 9848820778 9804675708।

0: लाल बहादुर धामी टिकापुनको कर्णप्रिय आवाजमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ, सुन्न नभुल्नु होला।
1: यो हो एनबी रेडियो नेटवर्क www.nepalbodh.com।

0: दरिबदार कचिपुर
1: मैनेजिंग डायरेक्टर जगदीश चंद्र बैग एवं एनबी परिवार
0: कॉन्टैक्ट 9848820778
1: 9809467570